सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद घन गुरबाणी गाव पाए सुख सहज आनंद गणा तब जपते हैं दुख जाए

रविकेंद्र सुजानचंद मैं कवि हूं। हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया है सारे हिंदुस्तान दे विच कोई राग नहीं गाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कविता नहीं गाएगा, सास संगत तेरी, कोई सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं, एक इतिहासक सच्चाई।

जिंदगी किसे बादशाह का घर नहीं और वो थान है आनंदपुर साहब आपको सदा जिसे कलगियां वाला बादशाह है। तो मैं ये भी सुने वो कवियां का बड़ा मान करके सुने उन्ना बवंजा कवि रखे हैं कि सुजान चंद मैं तेरा दोस्त हूं चंगा मित्र हो ही।

सारे गुरु दरबार सजे हो। इसे तरह संगत सजिया, संगत की भीड़ लग रही वारी वारी, सारे मत्था टेकते हैं, गुरु की असीस लैके अपनी अपनी जगह बैठ।

खाली ही दौड़ता जा रहे हैं। क्यों? जो मेरे गुरु ने किया है सुजान चंद दौड़ जा, ये दौड़ता पे है।

जंगल में झड़ियां बूटियां लिया के दवाई बना के थोड़ी सेवा करा। वो पिंड के लोग खड़े होते हैं पर हाथ जोड़ के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का शुक्र करते हैं। है दादा साढ़े पिंड तो किन्नी दूर आनंदपुर साहब तो बैठा है पर साढ़े गरीब लोगों की किमें साल ले साढ़े पिंड कोई बैठ लगे।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलना काटा है, सिमरन करता है,

मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल कौन को दवाई दे, इस जान चल सोच जे माई नाल जाव तो फिर दर्शन नहीं हो, अगे बड़ा तरस है, पता नहीं और कितना तरसना होगा। संगत एक लंघदियां ने दर्शन कर जाने, जो दर्शन करके आदि ने उन्होंने खुशी चली।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने। कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक जोगी जिन्ने तपस्या कीती ते वर प्राप्त कीता, मैं जिन्नू चाहवां

जोगी कहने लगा एक कोरी फिर जाओ उसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रशादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकु दे घर गए बुआ खड़काया भाई तिलकू जी ने बुआ

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनू सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनू वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुने भाई दिल कुछ उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तो कुर्बान हो जांदे ने। गुरु दा वास्ता पाया ते सिख किवें बैठा रहिंदा। बुआ खोले सामने भाई तिलकू।

जोगी जेड़ा सी कह लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा जेदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे मेरे गुरु मेरे नहीं ते सारिया दे सांझे ने उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहिब।

इस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गई है। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्होंने।

सुखी करो, जिथे निवास सको ते निभ सके, दोस्ती ओदे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे। ए ठीक है कि भला करो जरूर, पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे, तां उत्थे भला करो जिथों भलाई

45 साल का गभरू नौजवान गुरु मेरी उम्र 100 साल तो उत्ते रिधियां सिद्धियां दा मैं मालिक नौजवान गुरु जाके मथा टेकांगा ए नहीं हो सकता मैं वापस चलिया नाल आए लोगों ने समझाया अज तू अगे आ गए दर्शन करके जा दिल करेगा मथा टेकी दिल करेगा ना टेकी तेनू केड़ा किसी ने धक्के नाल फड़ के मथा टेकाना लोगों ने समझाया ताए जोगी फिर तुरिया ए अमृतसर दे लागे पहुंचे उधर तन गुरु अर्जन साहब अंतरयामी सिखा नु कहा एक शैमैना लगा।

इनाम दा बोल है जिड़े सिख ने प्यारे ने ओ गुरु दे बोल दे कोल आके बैंदे ने नाम दे बोल दे कोल ते गुरु दे गुणा दी विचार कर दे नाम दे नाल झोलियां भर दे उन्हां गुरसिखां तों

लगता भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दे। जद सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे, साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो, बलि दियो, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे पासे कीता ते नाले

ने अशीष दिते इस शरीर नु। एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। सतगुरु पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास साहिब पातशाह जी ने लिख दिता है।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे।

गया। बहुत धनाढ्य आचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत।

0: जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी।

0: चल पाया परमेश्वर पाया। अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया। मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
1: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
0: हाँ बेटी।
1: बाबा जी असी ही मन में जल लग रहे हैं, थोड़ी कुल के हजारे यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
0: कादा पता?
1: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
0: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
1: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
0: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
2: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी।
1: कागू हंस करे,
0: कागू हंस करे, कागू हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
1: गुरु अमरदास?
0: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
1: किन्ने दूर है गोइंदवाल?
0: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार ते गोइंदवाल।
1: अच्छा बाबा जी, असी चलने हैं।
0: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
3: उठ परी दायूज साज, सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई ना निले, सो सिर कप

थारे ही जीव अकाल पुरख वाहिगुरु ने कठे भेजे हैं। ए संसार एक बाजार है जिथे जीव वणज करन लई आए, सौदा करन लई आए। जिन्हां ने एथे आके सच दा वणज कीता, सेवा सिमरन परपकार कीता, ओ ता लाह खट के गए। ते जिन्हां ने एथे आके निरी माया दी ही खेड खेडी है, हजूर कहंदे हन ओ अपना मनुच्छा जन्म एवें व्यर्थ गवा के जाने। क्योंकि संसार एक रंग भूमि है जिथे हर जीव आपो अपनी खेडा विच रुझिया होया। हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगत सगल जगत। दाई दाया कहंदे हन खिडाउन वाले नु, दिन अते रात इस मनुख नु खिडा रहे हैं और सारा जगत इस विच खेड रहे हैं। और जेड़ी जेड़ी भी कोई खेड खेड रहे है, अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक दी खेड नु बड़े गहो नाल तक रहे है, बड़े गहो नाल लिखिया जा रहे है। जिन्हां ने एथे आके नाम दी खेड खेडी, ओ ता निरंकार दे चरणां दे नेड़े हो गए, उदी प्रसन्नता दे प्राप्त हो गए। जिन्हां ने मेरी माया दी ही खेड खेडी है, ओ मालिक दी बख्शिश तो दूर हो गए। हजूर दा वचन है पवन गुरु, पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे, धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेरे के दूर। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हां ने इत्थे आके नाम दी गालना कीती, नाम दा वणज कीता, ओ लाह खट के जानगे। इसलिए हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, भई मरण दे बाद भी कोई जीवन है, गल मुक नहीं जांदी। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि साकत पुरशां दा, पापियां पुरशां दा भी मरण दे बाद जीवन है, गुरमुखां दा, सतपुरशां दा, महापुरखां दा भी जीवन है। पापी दा जीवन कैसा है? हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, भई पापी साकत पुरुष जो है, ओ पहला ता अपना मनुच्छा जन्म ही नरक बना लैंदा, ते जदों अपनी औधी समाप्त करके जांदा है, उस लई कुंभी नरक फिर तैयार है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, तिन्ना मुख डरावने, ए साकत पुरशां लई है। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्हां विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे थोर ना थाओ। पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन माधानिया त्यो मथे धर्म रह। ए ता है साकत पुरशां दा जीवन। ते गुरमुखां दा जीवन कैसा है, भले पुरशां दा जीवन कैसा है? हजूर कहंदे हन के अंतर गुर आराधना, गुरमुख जन जो हन ओ मन करके भी जपदे हन और रसना द्वारा भी जपदे हन श्री वाहे गुरु, और नेत्रा द्वारा गुरु का दर्शन करदे हन, कन्ना द्वारा गुरु की बाणी श्रवण करदे हन। इसलिए ऐसे गुरमुख नू किथे निवास मिलदा? हजूर ने मोहर लगा दी, अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्या। रत्या तो भाव है सतगुरां दे चरणां विच जो जुड़दे हन उनां नू किथे थां मिलदी है? सतगुर सेती रत्या दरगह पाईऐ थाउ, दरगाह विच भी निरंकार उनां नू अपने चरणां विच वासा बख्शदा है। इसलिए जीव सारे ही आए हन, पर जो नाम दा वणज करके जाणदे उनां दा मुख एथे भी उजला है, ते दरगाह विच भी उजला होएगा। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है।

ऐसा निर्मल जल होंदा है, रोगी शरीर नूं अरोग कर देंदा है। किसे धरती दा ऐसा कठोर जल होंदा है, अरोग शरीर नूं नित दा रोगी बना देंदा है। नाम दोहां दा ही जल है, एक जल सुख रूप है, एक जल दुख रूप है। भाई साहब तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं।

इस मन को समझाए आई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याए आई रे

0: रत्नवा बारू भीत बनाई रचपत रत्न ही दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहा गवा
1: अजनु सब रच दिखया ना हनी अजहू सब